0: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से जायद तलबा तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801003 पर रابطہ कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी तसिंगलार शमा
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स फोन 09382732

ऑलरेडी जनाब एक मर तो फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मनन मेहरबान शुक्रिया तशकर बीसीआर कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे नहायत ही मुअज्ज़ज़ मोहतरम और दिलों के करीब रहने वाले सामईन। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से होंगे, खैरियत आफियत और खुशियों के साथ होंगे। अगर आप इस वक्त अपने घर की छत पर बैठे मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं या किसी सहन में ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे हैं तो भी अच्छे है जी, तो भी बेहतरीन बात है। या अगर आप ड्यूटी पर हैं या अगर आप कहीं जा रहे हैं, साथ में आपने अगर ट्यून इन किए हुए FM 94 रेडियो दिलवर सौ भी, तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये नीला आसमान चलता रहा और सीने में दिल जलता रहा। मेरे दोस्तों बास गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते बल्कि उन्हें महसूस किए जाते हैं, उन्हें मतलब जो है ना महसूस करना भी चाहिए और उनके बोल इंसान को उस याद या ख्वाबों या मतलब जो है ना ये कि अधूरी ख्वाहिशों और उन लम्हा तक ले जाते हैं जहां दिल कभी खामोशी से किसी का इंतजार किया करता था, कभी किसी दुआ में किसी का नाम आया था और कभी जिंदगी ने मुस्कुराकर भी हमें अच्छा जी, जिंदगी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जिंदगी के हवाले से मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी भी इस नीले आसमान की तरह मुसलसल सफर में है ना। दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मगर इंसान के दिल में बस जाने वाले कुछ एहसास नहीं बदलते। बाज़ यादें इस तरह की होती हैं लिसनर्स के वक्त के साथ पुरानी जरूर हो जाती हैं लेकिन उनकी खुशबू दिल से कभी खत्म नहीं होती, दिल से कभी मिटती नहीं है। तो मेरे मोहतरम सामीन, अगले कुछ चंद मिनट जो बाकी हैं वो आप लोगों के लिए बड़े भरपूर होने वाले हैं, आपने साथ जरूर देना है, साथ जरूर निभाना है। 09382804995 पे और इसी के साथ साथ मैसेजेस के जरिए भी आप लोगों ने आने और अपने अपने मैसेजेस आपने मुझे करके बताने हैं कि आप मेरे साथ साथ हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं। अच्छा, इस ट्रैक को मैं कुछ थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ अपनी आवाज में, देन फिर आगे चल के मजीद की गुफ्तगु करेंगे, मजीद की बात करेंगे, मौसम के हवाले से बात होगी, आप लोगों का हाल अहवाल भी लिया जाएगा और साथ साथ सारी की सारी बातें पश्तों में नहीं बल्कि जो है ना उर्दू में कुछ होंगी भाई। हमारे उर्दू सामीन बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार करते हैं इस बात का कि ताहिर कब उर्दू में बात करेगा। अच्छा, उर्दू लवर जितने भी हैं वो साथ साथ मुझे मैसेजेस करके अपना फीडबैक करके मुझे बताएं कि भाई आप लोग उर्दू लाइक करते हैं मेरी और क्यों लाइक करते हैं, किस वजह से लाइक करते हैं। होता है ना कोई मतलब जो है ना, या फिर यूं कहा जाए तो होती है कोई खास रीजन, कोई खास वजह, मतलब बगैर वजह के तो कोई बात भी नहीं होती ना, या फिर कोई मतलब काम नहीं होता, कोई ना कोई थॉट्स होते हैं, कोई वजह होती है, कोई रीजन होती है।

तेरी यादें हैं, तेरी बातें हैं, तेरे सपने हैं माहिया। वैसे सपनों की दुनिया में रहना जो है ना छोड़ दीजिए भाई, सपनों की दुनिया में जो है ना दीवाने रहते हैं।

अच्छा, मैं कुछ सपनों की दुनिया के हवाले से यहाँ पे बात कहना चाहूंगा, कुछ बातें कर लेते हैं सपनों की दुनिया के हवाले से भी, और तेरी यादें हैं, तेरी बातें हैं, तेरे सपने हैं माहिया। हाय हाय मेरे मोहतरम सामीन, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद दिल से नहीं जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बरसों बाद भी कानों में गूंजती रहती हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान खुली आंखों से भी देखता रहता है। यही तो जिंदगी का हुसन है कि यादें इंसान को, मतलब ये कि यादें इंसान को माजी से जोड़े रखती हैं, और ख्वाब उसे, मतलब जो है ना, ये कि मुस्तकबिल की तरफ चलने के हौसला देते हैं, एक हिम्मत देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यादों और ख्वाबों में एक बारीक सा फर्क भी है। फर्क किस तरह गया है? यादें अगर हमें मुस्कुराना सिखाएं तो नेमत है जी, मगर जो है ना, अगर वो हमें हाल से दूर कर दें, ये कि हमारा जो हाल है उससे दूर कर दें, तो बोझ बन जाती हैं। इसी तरह ख्वाब अगर मेहनत की तरफ ले जाएं तो कामयाबी की पहली, मतलब सीढ़ी बन जाती हैं। लेकिन अगर इंसान सिर्फ ख्वाबों में ही रहने लगे और हकीकत से मुंह मोड़ ले, या हकीकत से साइड पे हो जाए, तो फिर वो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता, हाय हाय हाय हाय, वो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता मायूसी में बदलने लगते हैं। जिंदगी सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा, बल्कि उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कदम बढ़ाने का नाम भी है। सिर्फ किसी के ख्यालों में जीते रहना, हर वक्त माजी में खोए रहना, और एक ऐसी दुनिया बसा लेना जहां हकीकत की कोई जगह ही ना हो, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है भाई मेरे। ये इंसान को ऐसा ऐसा जिंदगी की असल खूबसूरती जो होती है जिंदगी की, सॉरी माजरत, इंसान जिंदगी की खूबसूरती से दूर हो जाता है जी, क्योंकि जिंदगी में आज अगर इस बात में मैं क्या बात कहूं, क्योंकि जिंदगी आज में है, इसी लम्हे में है, प्रेजेंट में है, और उन लोगों में है जो हमारे साथ हैं, उन जिम्मेदारियों में है जो हमारा इंतजार कर रही हैं। और अगर मैं थोड़ा सा रोमानवी अंदाज में यहाँ पे ये बात करूँ, तो रोमानवी एहसास अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन सच्ची मोहब्बत भी यही सिखाती है कि इंसान ख्वाब जरूर देखे, मगर अपने ख्वाबों को हकीकत का लिबास भी पहनाए ना। मोहब्बत अगर मोहब्बत इंसान को कमजोर नहीं कर देती, मजबूत बनाती है। वो इंसान को जिंदगी से भागना नहीं, बल्कि जिंदगी का सामना करना सिखाती है। इस चीज का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आप। अच्छा, इस ट्रैक को हम साथ में सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, एंड सिद स्तर की और सिद स्तर की खुमारी। हाय, ओए ओए कुर्बान, ओए जार, घर क्यों

ओके जनाब, सास लाइफ कॉल्स प्रोग्राम के एंटरटेन को शामिल हो 09382804595 पदी नंबर तास कांटेक्ट होले छे जी। आओ शाब हजर तजर इशगम ने अंदाज सिखारो के शाबे अले जर तलवार हो गई मैसेज न हम कम ने राली गली छे जी। आओ दर ठेक कम ने योजल बिया ताज पारा मिक्स कॉम जी सास द खखे द पारा जी मुख खपल खखे कम ने पशा पर खुद जी।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

अस्पताल को पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्रानी सुविधा कतासु की हम सुखपली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म हो।

0: Jewelers. Proprietor Zeb Brothers, phone 0938273265.
1: पर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके जनाब, सुमरपुर हम जमारा आवाज हल्का उरिनो अगोईता स्टडिया में शिवाय मजीद अब भी वर्तवाय मच्छे का रेडियो दिल भर दे अकिब जान जे दुनिया मजीद।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम

0: ये है एक दुनिया इल्म व अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। दी कादी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजामे तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर राब्ता कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू दपारा शारजी तसिंगलार शमा
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुद्दा सिवाया का ना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732 65।
3: सर्दी हो या गर्मी रेडियो दिल पर आपके संग संग।
4: दादी रेडियो दिल पर स्तासु दजरा आवाज।
5: स्तासु पल चैनल रेडियो दिल पर
3: सर्दी हो या गर्मी रेडियो दिल पर आपके संग संग।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा

0: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादरी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवाबी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801003 पर रابطہ कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732 65

0: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ, हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल।
1: मैं लडूना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के जमुंग योदरी न्यू प्रोडक्ट्स रवान दी।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar।
2: दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास।